सहस्राख्यसप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनश्चम्बुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान् हिरण्यगर्भशिशिरोस्तपन